मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिज

तित सर्व रड़ै, तित सर्व रड़ै पहिले निवासा पाणी पावक तिन है किया। पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तै डूबी अले, मनु एक न चेत सुमूढ़ मना।

0: मूड कश भेद ना जान तो
1: महादेव को कहत सदा से निरंकार का कीर्तने देव
0: आप अपनी बुद्ध है देती बर्न पिन पिन तो हितेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा कै रूप अनूप स्वरूप रंग भयो राव कहीं पूपा अंडज जेर जसे तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपया जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार सिखे संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखते हुए मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके कौन निक नहीं है रक्षा हुए ता है सब काला दोस्त अरिष्ट टरे तत्

जहे हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी बड़ पागी हर जपना जन नानक को गुरु मत दीनी जप हर भव जल तरना

पर यह हाथ पैर तन देह पानी धोता उतरो सुखे मूत प्रीति कपड़ोए दे साबुन लइए ओ तो हिम पर यह मत पापा का संगो तो पैनावा के रंग पुनि पापी आखंडा हे कर करना।

सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राणु सर्वंत्राणु सर्वंकर्मं सर्वंधर्मं सर्वंयोक्ता सर्वंमुक्ता सर्वशान्त्वे प्रसाद। नमो नर्कनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं वैभूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध वैभूते न अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्रे न पुत्रे न सुत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते।

करुणालय है अर्कालय है खलखंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोबारण है तृत के तरण है जग के कर्ण है मनमानिय है जग जानिय है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से है खलखंड से परते पर है करुणाकर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी कृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजवाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विश्वंपर है करुणालय है नृपनायक है सर्व पायक है भव भंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता है परमात्म है सर्वआत्म है आत्मवस है जस के जस है भुजंग पर्यात शांति।

चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुक्ते स्वयं पवसुपं सर्वदा सर्वयुक्ते

कहा भयो जो दो लोच मून कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फिर लिए सात समुद्रन लो गयो पर लो गवायो बास कियो बिख्याम सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पिशाह को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो को पुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तहायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे

तुम्हें शाड कोई वर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख्य हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ है मुझे उबरी है मन काल का त्रास निवरी है हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु।

नमस्कार तस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सगुन सुख दियो सत्रन को पल मोहब्बत कियो कट कट की अंतर की जान भले बुरे की पीर पिशांत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचान कट कट की पट पट की जान जब युद्ध कर खरा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तहरा आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही तेरे निरालम जान भेद भेद अरियालम निरंकार निर्विकार निर्लम्ब।

अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै

अंगीकार्यो करे तेरा कार्य सब सुवर्ण सुमना गलां सुमरा स्वामी सो के मनोविसारे कह नानक मन मेरे सुधार और नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सुलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा है साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां कर सात सुख मनाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां वड़ियाइया कह नानक सुनो संत हो सब धरो प्यार हो साचा नाम मेरा आधार हो वाजे पंच शब्द घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच तू तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनकाओ सिनाम हर कह लागे कह नानक तै सुखुआ तित करो अनहद वाजे

हे रसना तू अनरस राज नहीं, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होर के तज चर हरस पलै ना पाए, हरस पाए पलै पिए हरस बौन न तृष्णा लागै आए, हो हरस करमी पाई है।

कि कर्म कमाया तुत शरीरा जातु जग मह आया हो जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया।

और एक है और मैंने वरना कोई कहा नानक नेत्रे अंध से सतगुर मिले दिब दृष्ट हुई हे श्रवण हो मेरे हो साचा सुनने नु पठाए साचा सुनने नु पठाए श्री लाए सुनो सतबाणी जित सुनी मंतन हरिया हुआ रसना रस सुमाणी सचल खेडाणी ताकि गत कहीं न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वह

संत साजन भए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे।

कर कृपा प्रभु मिले। गुरपूरे चरनी लाया हर संग सोहाई पाया जह जाइए तहां सोहेले

0: दी।
1: ये मात पिता सुतमीत न पाए,
0: मालूम नाम तेरे संग सहाई।
1: महाव्यान दूत जम दले,
0: तह केवल नाम संग तेरे चले।
1: मुश्किल हो गए अत भारी,
0: हर को नाम खिन माहे उदारी। हर को नाम कोट पाप पर हरे,
1: नाम जपो मन मेरे,
0: नानक पावो सुख कनेरे। हर का नाम जपत होए सुखिया,
1: क्रोधी बंधन परे,
0: हर का नाम जपत निस्तरे।
1: नानक माया रंग दिख न बिजावे,
0: हर का नाम जपते अगावे।
1: ये मार्गे जाता अकेला,
0: तै हर नाम संग होत सुहेला। नानक गुरमुख परम गत पाई है, नाम जपता पार प्राही। हर का नाम तत्काल उदार है, नाम जपत पावे विश्राम। हर का नाम कोट पाप खोवे, नानक पाई है साध कै संग। हर का नाम महा संतोषा, हर का नाम संग उजियारा। हर का नाम तै नाल पछानो, तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम। दह नानक हर हर अमृत वर्ख है, संत जना के मन विश्राम। हर कै नाम उदरे जन कोट, हर हर औखद साध कमात। पार ब्रह्म जन कीनो दान, नानक जन कै बिरत विवेक।

0: नाम जन शोभा पाई।
1: हर नाम जपत कछ नहि वियोग।
0: नानक पूजे हर हर देवा।
1: हर हर जन के मार्ख दीना।
0: हर तन जन को अपराव दीना।
1: हर हर जन के ओट सुतानी।
0: हर प्रताप जन अवर न जानी।
1: ओत जन हर रस राते।
0: सुन समाद नाम रस माते।
1: हर जन हर हर जपे।
0: हर का भक्त परख नहीं छपे।
1: हर की भक्त मुक्त भव करे।
0: नानक जन संकेते तरे। काम तेन हर हर गुण गाम। नाम सुनत दर्द दुख लथा। संत प्रताप दुर्त सब नसै।

महाउदास्त भी सरथी वै कनक असहै भरपूर दान जैन मार्ग संजमयत साधन तौपी हमें मैल न जावै

0: तिष्ठा कर को रख मन माहे।
1: जे प्रसाद सुगंधित तन लावे
0: तिसको सिमरत परम गत पाव है।
1: जे प्रसाद बसे सुख मंदर
0: तिस हत्याए सदा मन अंदर।
1: जे प्रसाद ग्रह संग सुख वचना
0: आठ पहर सिमर होते सरसना।
1: जे प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा ध्याये त्यावन जोग।
1: जे प्रसाद पाठ समुंदर हंडावे
0: तिस हत्या कत अमर लुभाव है।
1: जे प्रसाद सुख सेज सोई जे
0: मन आठ पहर ताका जस गावी जय। मुखता को जस रसन बखाने मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म। नानक पासे ती कर जावे है लेवला बहुत सनाम सनेही। मन सुख पावे हर हर जस कहत मन सरनी पर ठाकुर प्रवता कै। मन सास सास सिमरो प्रभु उचे नानक ताकी भगत करे। मन ते सिमरत क्यों आलस कीजे मन ते प्रभु को कबू ना बसारी। राख ब्रोए प्रभु अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठ सत सहते आई। उहा नानक तेरी रखे
1: प्रसाद करे पुन बो दान
0: मन आठ पहर कर तिस का ध्यान।
1: प्रसाद तू चार व्यवहारी
0: तिस प्रभु को सास सास चितारी।
1: प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सो प्रभु सिमरो सदा रूप।
1: प्रसाद तेरी नीकी जात
0: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात।
1: प्रसाद तेरी पत रहे
0: गुर प्रसाद नानक जस कहे। जे प्रसाद देखे बसमाद
1: प्रसाद बोले अमृत रचना।
0: जे प्रसाद सुख सहजे बसना
1: प्रसाद हस्तर चले।
0: जे प्रसाद संपूर्ण फल है
1: जे प्रसाद परम गत पावे।
0: जे प्रसाद सुख सह समावे
1: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लाग्यो।
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो
1: जे प्रसाद तू प्रगट संसार
0: तिस प्रभु को मूल न मनो बसार।
1: जे प्रसाद तेरा प्रताप
0: रे मन मूड तू ताको जाप।
1: जे प्रसाद तेरे कारज पूरे
0: तिसे जान मन सदा हजूरे।
1: प्रसाद तू पावे साच
0: रे मन मेरे तू तास राज।
1: प्रसाद सब की गत होए
0: नानक जाप जपे जप सोए।
1: आप जपाए जपे सो नाओ
0: आप गावे सो हर गुण गाओ।
1: प्रभु की पाते हुए प्रकाश
0: प्रभु दया ते कमल विगास।
1: प्रभु तो प्रसन्न बसे मन सोए
0: प्रभु दया ते मत उत्तम होए।
1: सर्वन दान प्रभु तेरी माया
0: आपो कछु न

0: पदीं साध के संग मुख उजल होत
1: साध संग मन तकलीफ होत
0: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग पढ़ के सो ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नीरा
1: साध संग सब होतन मेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा बनने कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा प्रभ में समानी
0: साध के संग गोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पंचा
0: साध संग हो सब की रीन
1: साध के संग मनोहर बहन
0: साध के संग न कतहु तावे
1: साध संग आसक्त मन पावे
0: साध के संग माया ते पिन
1: साध संग नानक प्रसन्न
0: साधु साध संग दुश्मन सब

0: परी।
1: ज्ञानी सदा निर्लेप
0: जैसे जल में कमल लेप,
1: हम ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सोख,
1: हम ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान,
1: हम ज्ञानी के धीरज एक
0: जो वसुदा को खोदे को चंदन लेप,
1: हम ज्ञानी का एक नाम
0: नानक जो पावक का सहज स्वभाव, जैसे मैल न लागे जला,
1: हम ज्ञानी के मन होई प्रकाश
0: जैसे तारु पर आकाश,
1: हम ज्ञानी के मिटत सत्र समान,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान,
1: हम ज्ञानी ऊंचते
0: ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा,
1: हम ज्ञानी से जन पै
0: नानक जिन प्रभ आप करे,
1: हम ज्ञानी सगल की रीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रव संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी अहम्ब त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदानंद, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,

को अपार सगल निस्तार अष्टपदी मन में प्रीत निरंजन दास साध की टहल संसंग हेत सबते जाने आपस को मंदा मन की वासना मन ते डरे नानक कोट मद को ऐसा पारस बिशन की माया ते हुए भिन्न तिस वैष्णो का निर्मल धर्म केवल भगत कीर्तन संग राचै सब ऊपर होवत कृपाल नानक हो वैष्णो परम गत पावे सगल त्याग दुष्ट का संग कर पूजे सगल पार ब्रह्म तिस भगौती की मत उत्तम होवे मन तन अर्पै बिशन प्रीत नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावे राम नाम आत्म में सोते उस पंडर के उपदेश जग जीवे सो पंडित मेरे जो नावे सुख में जाने सुनूल नानक उस पंडित को सदा देश चौबर नामे जपे को नाम सार संग पावे जन कोए पास प्रेत मुक्त पाथर को तारे कल्याण रूप मंगल गुण गाम नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म इसका नाम सत राम दास दास संतन पाए दिन पाया सो दास दर गह परवान तिस दास को सब सोजी परे ऐसी जुगत नानक राम दास जीवन मुक्त सो कहावे सदा नंद नहीं वियोग तैसा अमृत तैसी विखाटी तैसा रंग तैसा राजान नानक पुर कहिए जीवन मुक्त जित जित का रख है तैसा तिन आओ प्रभ पावे सोई फन होग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग

कोटा चार बिहारी, कई कोट बन ब्रह्म उदासी, कई कोट तपिसर होते, कई कोट काव काव विचार है, नानक करते का अंत न पाव है, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट अपेक्षात्म निकोर, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट पर देश पर माव है, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पाथर बिरख ने पजाए, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट देव दान इंद्र सर, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे, कई कोट वेद प्राण सिमरते अर सासत, कई कोट नाना प्रकार जानत, कई कोट गिरी में स्वर जीवे, कई कोट भूत प्रे सुकर मनराज, नानक आप लेप्रया भरपूर, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट बहु जूनी फिर है, कई कोट काले तक पाहे, कई कोट माया में चिंत, नानक सब किस प्रभ के हाथे, राम नाम संग दिन लिव लागी, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, तिनको मिलियो प्रभ अपनी।

0: करावे।
1: प्रभावे ता हर गुण पाखे। आप करे अपन विचारे। खेले विकसे अंतर जामी। नानक दृष्टि अवर न आवे। जो तिस पावे सोई करावे। जो तिस पावे सोई करे। जे जानता अपना बचे। निम कमाए चार गुंड फिर आवे। नानक के जन नाम मिले। पार ब्रह्म गरीब नवाज। तिस तत्काल तै तिस प्रगटावे। ताका लेखा लगन जगदीश। घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास। नानक जीवे नेक बढ़ाई। कर्ण करावन सर्व को नाथ। जो तिस पावे सोई फल थियो। कबू सोग हर खरंग हसे। कबू उबकास बयाल। नानक आप मिलावन हार। कबू सोए रहे दिन रात। कबू सरकी हो तरवाल। कबू भिखारी नीच का साजा। कबू भला भला कहावे। गुर प्रसाद नानक जस कहे। कबू मोन तारी लावे ध्यान। कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान। अनित जोन पर मैं परमिया। जो प्रभावे तिवे नचावे। नानक दूजा अवर न कोए। उस स्थान ते बहु न आवे। उस स्थान का नहीं विनाश। सदा बसह पार ब्रह्म के संग। जो ज्योति

0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे,
1: संत के दुखन सुख सब जाए,
0: संत के दुखन नरक में पाए,
1: संत के दुखन मत होए मलीन,
0: संत के दुखन सोबा के हीन,
1: संत के हत्ते को रखे ना कोए,
0: संत के दुखन थान प्रयास होए,
1: संत कृपाल कृपा जे करे,
0: नानक संत संग निंदक भीतर है,
1: संत के दुखन ते मुख पवे,
0: संतन के दुखन काज जो लवे,
1: संत के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन तिल जोन करमाए,
1: संत के दुखन तृष्णा में जले,
0: संत के दुखन सब को चले,
1: संत के दुखन तेज सब जाए,
0: संत के दुखन नीच न जाए,
1: संत दुखी का थाऊ को नाए,
0: नानक संत पावे ता हो ही गत पाए,
1: संत का निंदक महाहत ताए,
0: संत का निंदक हंट करना पाए,
1: संत का निंदक महाहत्यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
1: संत का निंदक राजते हीन,
0: संत का निंदक दुखियार दीन,
1: संत के निंदक को सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा भजोग,
1: संत की निंदा दुख में दुख,
0: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख,
1: संत का दुखी सदा पवित्र,
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित,
1: संत के दुखी को डन लागे,
0: संत के दुखी को सब त्यागे,
1: संत का दुखी महाअहंकारी,
0: संत का दुखी सदा भिखारी,
1: संत का दुखी जन्मे मरे,
0: संत के दुख ना सबते ठरे,
1: संत के दुखी को नाही ठाओ,
0: नानक संत पावे ता लय मिलाए,
1: संत का दुखी अद बीच ते टूटे,
0: संत का दुखी किते काज ना पहुंचे,
1: संत के दुखी को ज्ञान परमाइए,
0: संत का दुखी उजड़ पाइए,
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
0: जो सास बिना मित्र के लोथा,
1: संत के दुखी की जड़ किछ नाही,
0: आपन ही जापे ही खाए,
1: संत के दुखी को अवर न राखन हार,
0: नानक संत पावे ता लए उबार,
1: संत का दुखी इयों बिल लाए,
0: जो जल में उठ मछली तड़फड़ाए,
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
0: जो पावे की तन नहीं तड़पे,
1: संत का दुखी छुटे अकेला,
0: जो बुआड़ के माहे हिला,
1: संत का दुखी धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सब मिथ्या कहत,
1: तिरत निंदका तुरही पया,
0: नानक जो तिस पावे सोई थिया,
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहकाइए,
0: संत का दुखी ना मरे ना जवाइए,
1: संत के दुखी की पूजे ना आसा,
0: संत का दुखी हो चले रासा,
1: संत के दुख ना तिष्ठे कोई,
0: जैसा पावे तैसा कोई होए।

0: अपने सेवक की सर पर रखे, अपने सेवक को नाम जपाई,
1: अपने सेवक की आपत रखे,
0: ताकि घटमित कोई न लख।

गुरु की आज्ञा मन में सहे, हर हर नाम ते सत्य आवे, जैसे वे के कार्य रास, जिसको होत प्राप्त स्वामी, नानक सो सेवक गुरु की मतले, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, आनिक बार गुरु को बन जाओ, आठ पैर पार ब्रह्म रखता, एक है आपने ही कुछ परम, नानक ऐसा गुरबड़ पागी पाइये, परसा जानगत निर्मल रीत, पार ब्रह्म की धरगे गवे, मन संतोख आत्म पतियाने, अमृत दृष्टि के हुए शांत, नानक जिस पावे तथलय मलाए, संत पुरख पूर्ण विवेक, अगम गोचर प्रभु निर्मानी, ताकि कीमत किरे न पाई, चरण कमल हृदय सिमरे, नानक जस प्रसाद ऐसा परम जपने, अमृत पीवे अमृत हो

संत जना के हृदय सब धर्म सर्व व्यापी राम संग रचन सत वचन साधु सब कहत कारण करावन हार प्रभ जाने नानक दर्शन देख सब मोही तस पावत सगली उत्पत इस पावे ता एकम कार जस पावे तस लय मलाए आपे आपा भरपूर नानक ते जन आप बजाए सब नैन पेखन हारा आपन जा साफी सुना आज्ञाकारी किन्नी माया जो को सहना सो आपे कहे नानक जा पावे ता लए समाए उरे कहो किने कछ करा आपे जाने अपने जी की ओत पोत अपन संग राच दूसर होए तसु जी पाए गुर प्रसाद नानक हो जान आम लाए ले प्रसोए जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत जस प्रसाद संग जत तराया जन के

परम सत्कार योग गुरु की साजी निवाजी गुरु प्यारे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारे गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे टल चावर तखत छत्र दे मालक गुरता गद्दी ते सुभायमान जागदी जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बड़ी अपार कृपा रहमत बख्शिश की है जो अज इस पावन दरबार के दो परिवारों का सुमेल हो जा रहा है। इस खुशी के मौके पर दास खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर के समूह सेवादारा वालों आप दूर नेड़े आए सारे पतवंते सज्जणा का तहे दिलों धन्यवाद और निघा जीवाया कर रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ खालसा दीवान सोसायटी गुरद्वारा साहिब सुख सागर I would like to warmly welcome each one of you who came here all the way to bless this beautiful couple who is now sitting in front of Shri Guru Granth Sahib Maharaj. Thank you so much everybody for being here, for joining us today. It's a really pleasure and it's a beautiful day and it's a special day for the couple and your presence makes it even more special. Today it's not just a ceremony but it's a blessing when two souls merge into one in the presence of our eternal Guru. So as we are sitting in this darbar with Guru Sahib as the supreme power, so it becomes our collective responsibility to maintain the integrity and decorum of this darbar, which means absolutely no talking, listening to the kirtan and paying attention. For your convenience and to help you connect more deeply, we've got screens on both sides. For those who can read the Gurbani, please try to read and sing along. And for everybody else, we've got translations in English too. Sat Sangat Ji, sab to pehla jaruri benti hai. अपने जो निजी विचार ने गल्लां बातां ने कृपा करके उन्हां नूं संकोचन की कृपालता करो चुप दा दान बख्शिश करो। अपने फोन साइलेंट ते ला लिओ अते जिथे असी सतगुरां दे चरणां विच सुभाग जोड़ी दे आउण वाले भविख दे लई अरदास बेनती करनी है उत्थे ही असी सतगुरां पासों अपनियां झोलियां भी खुशियां ते खेड़े दे नाल भर के लिजाणियां ने। इस करके जिन्हां गुरमुखां नूं बाणी पढ़नी आउंदी है जो बाणी कंठ है उन्हां दे चरणां विच बेनती है कि वह भी नाल नाल गुरबाणी दे गायन करन। बाकी संगतां वास्ते स्क्रीनां लगियां ने आप जी फॉलो कर सकते हो। आओ दोनों ही परिवारों की जानकारी दास साहब जी ने सन्मुख रख रहा है। काका जी जगजीत सिंह गरेवाल सपुत्र सरदार कुलविंदर सिंह जी गरेवाल अते माता जी कुलविंदर कौर गरेवाल परिवार का पिछलेरा पिंड झांडे जिला लुधियाणा पंजाब अते इस वक्त ये परिवार सरी बीसी का निवासी है। जगजीत सिंह दे दादा जी का नाम सरदार दर्शन सिंह जी और दादी जी बीबी करनैल कौर गरेवाल इन्हां दे नाना जी सरदार करम सिंह जी औजला और नानी जी माता हरमेल कौर औजला हैं। इसी लड़का परिवार कमिंग टू द ब्राइड बीबा गुलनाज ढिल्लों सपुत्री सरदार अजमेर सिंह जी ढिल्लों और माता जी सतेंद्रपाल कौर ढिल्लों परिवार पातड़ा जिला पटियाला पंजाब तो बिलोंग करता है अते इस वक्त यह परिवार विनपैग मैनीटोबा का निवासी है। गुलनाज के दादा जी का नाम सरदार कृपा सिंह जी और दादी जी का नाम बीबी जोगिंदर कौर है। इन्हों नाना जी का नाम सरदार केवल सिंह जी और नानी जी माता रजवंत कौर है। सो इसी दोनों ही परिवारों की संखेप रूप से जानकारी हुण साध संगत जी आरंभता की अरदास होगी जिस विच केवल सुभाग जोड़ी जगजीत सिंह गुलनाज और इन्हों जो माता पिता हैं अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के हाजिरी लवाउणगे। बाकी संगतां वास्ते बेनती आप जी अपने स्थानों पर सजे रहो संगनास्क सुभाग जोड़ी जगजीत सिंह गुलनाज ढिल्लों एंड देयर पेरेंट्स वेयर एवर दे सिटिंग प्लीज स्टैंड अप फॉर द अरदास। जिथे जिथे बैठे हो अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाण। अरदास की सेवा निभा रहे ने ज्ञानी हरबंस सिंह जी हैड ग्रंथी गुरद्वारा साहिब सुख सागर उपरंत सतगुरों का मुख वाक ज्ञानी सुरेंद्र सिंह जी आप जी ने सरवण कराउणगे। आओ अरदास बेनती हो रही है एकाग्रता बख्शिश करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

सिमृत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुरपुरा रद हो, सब किलबिख पाप गवाया, सहज आनंद होआ वड भागी, मन हर हर मीठा लाया।

हर पाया प्रभ अविनाशी, हर प्रभ ठाकुर का जिरचाया, तन हृदय नाम विगासी।